सामिन, क्या आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी खुद से बहती है? लम्हा मौजूद पर तवज्जो मरकूज करना और अफरा तफरी और भीड़ से दूर रहना बहुत दिलकश होता है। क्या आप नहीं सोचते कि क्या वक्त आपको एक साथ पीसने के बजाय थोड़ा सा सुस्त करते और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने को पसंद नहीं करता? अगर आप सोचते हैं कि हाँ या चाहें, तो आप सुस्त शहर का दौरा करके इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और अपने आप को इन शहरों की दिलकशी में गर्क कर सकते हैं जहाँ वक्त को मुख्तलिफ तरीके से समझा जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने स्लो सिटी तहरीक के बारे में बात की, जिसमें फितरत, कुदरती वसाइल, तारीखी और सकाफती इकदार, लोगों और मयारी ज़िंदगी और तुर्की के पहले पुरसकून शहर सफ़र हिसार पर तवज्जो दी गई है। नस्ली खान देरमेन जोलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अक़वामे मुत्तहिदा ने यमन में बढ़ती हुई शहरी हलाकतों पर तश्वीश का इजहार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर टर्क ने दोबारा शिद्दत इख्तियार करते तनाज़े के नतीजे में बढ़ती हुई शहरी अमवात के पेश नज़र यमन में फौरी तौर पर कशीदगी में कमी करने का मुतालबा किया। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक 6 अगस्त से हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में हौसी हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 17 शहरी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मुल्क को दोबारा एक वसी पैमाने की जंगी सूरत हाल की तरफ नहीं लौटना चाहिए।
2: जैम्बिया के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जैम्बिया के सदर हाकाइंडे हिचिलेमा 5 साल की दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। गुज़श्ता रोज 51% से ज्यादा वोट हासिल करने के बाद हिचिलेमा को गुज़श्ता जुमेरात को होने वाले सदारती इंतखाबात में दूसरे राउंड की जरूरत के बगैर इंतखाबात का हतमी फातह करार दे दिया गया है। कमीशन के मुताबिक हिचिलेमा ने 29,65,326 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि इनके करीबी तरीन हरीफ और अपोजिशन लीडर ब्रायन मेनवेले को 18,56,217 वोट मिले हैं। कमीशन के चेयरपर्सन मवांगा लासोलोमोस ने कहा है कि मैं ऐलान करती हूं कि 18 अगस्त 2026 को हिचिलेमा हाकाइंडे जैम्बिया के सदर मुंतखब हो गए हैं।
1: फिलिपाइन के जनूबी शहर जाम्बोआंगा के एक हाई स्कूल में सुबह के वक्त फायरिंग का एक वाकया पेश आया। क्लासें शुरू होने से ठीक पहले होने वाले इस वाक़े में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 तालिबे इल्म और 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। खौफ जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर हाई स्कूल का ही आखिरी साल का एक तालिबे इल्म था जो पिस्तौल के साथ स्कूल में दाखिल हुआ था। फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को जामे तहकीकात करने और स्कूलों में सिक्योरिटी के इंतजाम को फौरी तौर पर सख्त करने की हिदायत की है। वाकई की वजह और स्कूल में सिक्योरिटी की खामियों के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं।
2: कोलंबिया में 10 अगस्त को आने वाले 7.4 शिद्दत के जलजले के बाद जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। मुल्क के सदर एवेलारो डोडी ला एस्प्रेला ने कौम से खिताब में तस्दीक की है कि इस खौफनाक आफत के नतीजे में अब तक 289 अफराद जाँ बहक और 4,000 से जायद जख्मी हो गए हैं। सरकारी इत्तला के मुताबिक जलजले ने मुल्क के तकरीबन 1/3 हिस्से को मुतासर किया है, जिससे इब्तदाई तखमीने के तहत $9.5 अरब का जानी माली नुकसान हुआ है। मुतासरा इलाकों में 26,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि मलबे तले दबे अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां बिलातातुल जारी हैं। सदर ने ऐलान किया है कि मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ के अमल को तेज करने के लिए एक वसी इमदादी मनसूबा भी कायम किया गया है।
1: वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले तबाहकुन जलजलों के बाद जानियों माली नुकसान के अफसोसनाक आदाद शुमार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वेनेजुएला की कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रॉड्रिगस ने ऐलान किया है कि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,438 और जख्मियों की तादाद 16,740 तक पहुंच गई है। 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जलजलों से लरजने वाले इस मुल्क में सबसे ज्यादा तबाही लागवेरा की रियासत में हुई, जहां 59,000 से ज्यादा रिहायशी मकानात में नुकसान की तशखीस की गई है। आलमी बैंक के अंदाजों के मुताबिक जलजले के नतीजे में होने वाले माली नुकसान की मालियत $19.6 अरब है। मुल्क में कायम की गई आर्जी पनागाहों की फराहमी के साथ साथ मुतासर लोगों को नए मकानात की हवालगी का अमल भी शुरू कर दिया गया है।
2: टर्किश एयरलाइंस ने अपने 559 तैयारों के वसी बेड़े और 92 मिलियन से ज्यादा मुसाफरों को सफरी सहूलियात फराहम करके अपने हरीफ ब्रिटिश एयरवेज को 2 गुना इजाफे के साथ पीछे छोड़ दिया है। बरतानिया के नामवर अखबार दी टाइम्स ने इस बारे में तफसीली रिपोर्ट में कहा है कि तुर्की एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुराद शुक्र ने कहा है कि टर्किश एयरलाइंस ने अपने 559 तैयारों के वसी बेड़े और 92 मिलियन से ज्यादा मुसाफरों को सफरी सहूलियात फराहम करके अपने हरीफ ब्रिटिश एयरवेज को 2 गुना इजाफे के साथ पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्किश एयरलाइंस अगले 10 वर्षों में अपने तैयारों की तादाद को 850 तक पहुंचाने और $50 अरब की नई सरमायाकारी करने का हदफ रखती है। इस सिलसिले में वो बरतानिया के लंदन सिटी एयरपोर्ट के लिए एक नया रूट शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इस खबर में मजीद बताया गया है कि नई नस्ल के जदीद एयरबस A350 तैयारों के जरिए इस्तंबुल से ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज किया जाएगा, जबकि मुसाफरों के तजुर्बे को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए कैबिन मुतारिफ करवाए जाएंगे।
1: अमरीका का अली बर्ग किस्म के गाइडेड मिसाइल वाला मुहारिब जंगी बहरी जहाज USS बैनफोर्ड गुज़श्ता माह बहिरा जनूबी चीन में पेश आने वाले एक तकनीकी खराबी के बाद چار دن کے لیے بجلی سے محروم رہا۔ یو ایس ایس بینفورڈ کو فلپائن پہنچنے تک ایئر کنڈیشننگ، بیت الخلاء، باورچی خانہ سہولیات اور پینے کے صاف پانی سے محرومی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کے ساتھ میں بحری بیڑے کے ترجمان کمانڈر میتھیو کامر نے یو ایس این آئی نیوز کو دیے گئے بیان میں کہا کہ 24 جولائی 2026 کو انڈو پیسیفک خطے میں معمول کی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے ارلی برگ کلاس کے گائیڈڈ میزائل سے لیس محارب جنگی جہاز یو ایس ایس بینفورڈ نے اپنے جنریٹروں میں ایک تکنیکی خرابی اور اس کے نتیجے میں بجلی کی بندش کی اطلاع دی۔ کامر نے مزید کہا ہے کہ اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا اور عملے نے اس خرابی کے دوران استقامت، عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔
2: جرمنی کی بندرگاہوں پر منگل کے روز 24 گھنٹے کی تنبیہی ہڑتال نے بندرگاہوں کو تقریباً مفلوج کر دیا ہے۔ بندرگاہوں کے ملازمین نے اجرت کے معاملے میں دباؤ بڑھانے کے لیے کام چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ہیمبرگ اور دیگر 5 بندرگاہوں کے کنٹینر ٹرمینلوں میں کام متاثر ہوا ہے۔ ورلڈ یونین کے مطابق ہڑتال کا آغاز نصف شب کے بعد شروع ہونے والی نائٹ شفٹ نے کیا اور اس سے ہیمبرگ، بریمر ہیون، بریمن، ویلہیلسم، ہافن، ایمدن اور بریک کی بندرگاہیں متاثر ہوئی ہیں۔ ہیمبرگ میں ہڑتال نے ایچ ایچ ایل اے اور یورو گیٹ کے زیر انتظام مراکز سمیت بندرگاہ کے 4 بڑے کنٹینر ٹرمینلوں کو متاثر کیا ہے۔ ورلڈ یونین کے مذاکرات کار سلوی کریش نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آجرین کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، کارکن بہتر پیشکش چاہتے ہیں اور اس کے حقدار بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو چالو رکھتے ہیں اور پورے شعبے کو مستحکم اور کامیاب رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ورڈی تقریباً 11,000 بندرگاہی ملازمین کی اجرت میں پورے 12 مہینوں تک مستقل 8.2% اضافے اور فی گھنٹہ کم از کم 2.50 یورو اضافی اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے۔
1: اور سامعین، فراری کی پہلی برقی گاڑی $40 ملین کی ریکارڈ قیمت پر فروخت ہو گئی۔ آٹو موبائل کمپنی فراری کے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے پہلے ماڈل کا خصوصی ورژن کیلیفورنیا میں خیراتی اداروں کے لیے منعقدہ ایک نیلامی میں $40 ملین کی ریکارڈ قیمت پر فروخت ہوا ہے۔ آرڈر پر خصوصی طور پر تیار کی گئے فراری لوچے چیسی نیلامی میں فروخت ہونے والی دنیا کی مہنگی ترین نئی گاڑی بن گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق اس فروخت سے حاصل ہونے والی تمام رقم تعلیمی منصوبوں کے لیے مختص کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

मंजर तश्कील देते हैं। सोशल मीडिया ने इन हालात को पैदा करने के बजाय पहले से मौजूद नकल व हरकत की सलाहियत को कम वक्त में मुतहरक करने के लिए इजाफी मुहर्रक का काम किया है। यह सूरत हाल हिजरत को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बहस को भी एक नए रुख पर ले जाती है। यूरोप में बेलारूस पोलैंड सरहद पर 2021 का बहरान और मराकश और स्पेन के दरमियान 2021 ही में होने वाली सप्ताह की कशीदगी जैसी मिसालों में यह बहस हो चुकी है कि हिजरत की लहरों को रियासतों के माबैन सियासी इख्तलाफात में दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम 2026 का सप्ताह बहरान इसमें डिजिटल मोबलाइजेशन का पहलू भी जोड़ता है। अब सरहदों को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर किए बगैर सिर्फ यह सच्ची या मन घड़त मालूमात फैलाना ही कि सरहदें खुल गई हैं हज़ारों लोगों को एक ख़ास नुक्ते पर जमा करने का सबब बन सकता है। इसलिए मुस्तकबिल में हाइब्रिड खतरात की बहस में गैर कानूनी हिजरत और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मज़ीद यकजा करके देखे जाने की तवक्को की जा सकती है। दूसरी तरफ एक और अहम मसला इस गुमराह कुन मालूमात का माखुज का तायुन करना है। गलत मालूमात इंसानी स्मगलरों, इंफरादी सोशल मीडिया अकाउंट्स, मुनज़्ज़म नेटवर्क्स या सियासी मकासद रखने वाले अनासर में से किसने तैयार की, इसके नतायज मुख्तलिफ होंगे। इसलिए सप्ताह में गुमराह कुन मालूमात की मौजूदगी और उसके किसी खास रियासत या सियासी उनसर की तरफ से मुनज़्ज़म किए जाने के दावे को अलग अलग देखा जाना चाहिए। जब तक ठोस शवाहिद ना मिलें, इस बहरान को बाकायदा मनसूबा बंद इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करार देने में तजियाती तौर पर एहतियात बरतना होगी। यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल जाहिर करता है कि सरहदी सिक्योरिटी अब बतदरीज डिजिटल स्पेस के साथ मुंसलिक हो जाएगी। विरकॉनन का प्लेटफॉर्म से बहरान के वक्त ज़्यादा मौसर निगरानी, फैक्ट चेकिंग इदारों के साथ मजबूत तआवुन और फौरी मदाखलत का मुतालबा करना यह जाहिर करता है कि यूरोपीय यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत बड़ी टेक कंपनियों से अपनी तवक्कुआत का दायरा सिक्योरिटी बहरानों तक बढ़ा सकती है। रुकन ममालिक का कबल अज़ वक्त इंतबाही निज़ाम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर बहस शुरू करना भी इस तब्दीली की तायीद करता है। इस तरह इमिग्रेशन मैनेजमेंट में अब न सिर्फ फ्रंटेक्स सरहदी दीवारें या वापसी के माहदे अहम होंगे बल्कि डिजिटल मालूमती निज़ाम की निगरानी भी एहतियाती सलामती पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है। ताहम ये नुक्ता नज़र अपने साथ एक बड़ा तजाद भी लाता है। गुमराह कुन मालूमात के खिलाफ जंग के नाम पर सोशल मीडिया की निगरानी को बढ़ाना आज़ादी इजहार राय, ज़ाती डेटा के तहफ़ और जायज़ सियासी बहसों को महदूद करने के हवाले से नए तनाज़ात खड़े कर सकता है। ख़ास तौर पर बहरानी सूरत हाल के तस्वुर की मुबहम हदूद ये ख़तरा पैदा करती हैं कि गैर मामूली हालात के लिए तैयार किए गए डिजिटल कंट्रोल टूल्स वक्त के साथ साथ आम सिक्योरिटी मालूमात का हिस्सा बन जाएंगे। नतीजे के तौर पर सिप्ता का बहरान यह जाहिर करता है कि यूरोप की हिजरत की पॉलिसी में सिक्योरिटी की एक नई तह उभर कर सामने आई है। जहां जिस्मानी सरहदी सिक्योरिटी और डिजिटल स्पेस के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अमली तौर पर हिजरत और सरहदी इंतज़ाम के अहम मोहरे बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए अब बुनियादी चैलेंज न सिर्फ गैर कानूनी आमद को रोकना होगा बल्कि बड़े पैमाने पर नकलो हरकत शुरू होने से पहले ही डिजिटल स्पेस में मौजूद सिग्नल्स का पता लगाना होगा। इस लिहाज से सप्ताह को इस बात की एक अहम अलामत समझा जा सकता है कि यूरोप की मुस्तकबिल की सरहदी सलामती पॉलिसी बयक वक्त एक डिजिटल अर्ली वार्निंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दील हो सकती है। उर्साम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जोलू का तज़िया आपकी खिदमत में पेश किया गया है। शोरश ज़दा अफ्रीका।

शामिल प्ले डू जिसका मनसूबा वॉल पेपर, क्लिनर, फौजी बूटों के लिए नर्म प्लास्टिक और मुजस्मा साजी के तालिब इल्मों के लिए सांचों के तौर पर बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ छोटे बच्चों के ख्वाबों को हकीकत बनाने का आला भी बन गया। दरअसल दो मुख्तलिफ बड़े आजमों के मौजूदों की कहानी है जो उससे ला इल्म थे एक दूसरे। इस दरियाफ्त की कहानी के नतीजे में, जिसमें इंग्लिस्तान के बाथा में एक आर्ट टीचर विलियम हार्बर्ट, अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजीनियर जेम्स राइट और वॉलपेपर क्लीनर पेस्ट बनाने वाले नोआ मैकवेकर मुख्तलिफ मकासद के लिए निकले थे। अपनी सीजात के नतीजे में पहले उन्होंने बच्चों के दिल जीते, बाद में एनिमेशन फिल्म की तख्लीक का बाइस बने। आर्ट टीचर विलियम हार्बर्ट अपने मुजस्मा साजी के तालिब इल्मों के लिए खुशकना होने वाली मिट्टी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो नतीजा नहीं मिल सका जो उन्हें फार्मूलों को तब्दील करके मिला था। या तो वो हुआ कि वजह से चिपकता नहीं था या फिर सख्त हो जाता था। ये तमाम तरीके नाकाबले नाकाम हो चुके थे। तवील आजमाइशों और मामूली तफक्कात के बाद सही मुरक्कब तलाश करते हुए हार्बर्ट ने मिट्टी की एक किस्म दरियाफ्त की जो नर्म और गैर जहरीली थी। यह मुरक्कब, जिसे 1899 में पेटेंट किया गया था, तेजी से एक तजारती प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसके महदूद इस्तेमाल की वजह से यह सबसे पहले उस वक्त तक ज्यादा मकबूल नहीं हुआ जब तक कि उसे एक बार फिर इंजीनियर्स जेम्स राइट और नोआ मैकवेकर ने दरियाफ्त नहीं किया, जो एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज की तलाश कर रहे थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी फौज के लिए हवाई जहाज के टायरों और फौजी बूटों के लिए प्लास्टिक की जरूरत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। जनरल इलेक्ट्रिक में इस शोबे में काम करने वाले जेम्स राइट प्लास्टिक की एक नई किस्म तलाश करके उसे जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उनका मकसद बच्चों के लिए खिलौना ईजाद करना नहीं था। अमरीकी इंजीनियर, जिन्होंने मुख्तलिफ तजुर्बात किए लेकिन मतलूबा नतीजा हासिल ना कर सके, उन्होंने गलती से बोरिक एसिड के चंद कतरे अपने इस्तेमाल करदा सिलिकॉन ऑयल में गिरा दिए। थोड़ी देर के बाद जेम्स राइट ने देखा कि इसमें शामिल बोरिक एसिड के साथ सिलिकॉन का तेल बहुत कदरे सख्त हो गया है और काबिल अमल बन गया है। उन्होंने अपने काम को इसी तरह मरकूज किया और प्लेडू के मौजूदों में से एक बन गए। उसी वक्त नोआ मैकवेकर, जो अपने खानदान की सफाई करने वाली कंपनी को सपोर्ट करना चाहते थे और इसी तरह के फार्मूले के साथ वॉलपेपर क्लीनर प्रोडक्ट तैयार करते थे, बहुत देर से महसूस किया कि उनकी नई दरियाफ्त बच्चों के तखयल के लिए कितनी अहम हो सकती है। मैकवेकर का खसूसी पेस्ट एक बेहतरीन वॉलपेपर क्लीनर था, क्योंकि इसमें जहरीले केमिकल नहीं थे और इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि वॉलपेपर पर दाग नहीं लगते थे। कुछ अरसे के बाद वॉलपेपर क्लीनर के माहरीन ने महसूस किया कि इस माजून को स्कूल में आर्ट के आसान काम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असातजा के इस काम के बारे में जानकर नोआ मैकवेकर के भतीजे जोसेफ मैकवेकर ने फैसला किया कि अपने चचा के तैयार करदा माजून को नए ब्रांड के साथ मुतारिफ करवाना दानिशमंदी होगी। सामिन, प्ले डू इंडस्ट्री, जिसे पिछली सदी की सबसे अहम ईजादात में से एक समझा जाता है और जिसकी तैयारी की तरकीब पेटेंट रखने वाली कंपनियों ने खुफिया रखी है, आज आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। प्ले डू की कहानी, जो कि तवील अरसे से सिर्फ आर्ट स्कूलों या छोटे बच्चों के प्ले रूम्स में ही दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ तक कि उसे ऑस्कर की तकरीब तक ले जाया गया है, जिसे सिनेमा इंडस्ट्री का उरूज भी समझा जाता है। बरतानवी हिदायतकार और प्रोड्यूसर सर निक पार्क ने 2005 में अपनी एनिमेटेड फिल्म वॉलेस एंड ग्रोमिट के साथ ऑस्कर अवार्ड जीता था, जिसमें किरदारों को प्ले डू के साथ मॉडल बनाया गया था। आइंदा हफ्ते तक अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इजादा।